श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री

जीवन होर खुशियां बख्शनियां। अमृत वेले की दात लई सरदार कुलवंत सिंह जी जसविंदर कौर 1100 रुपये लंगरा विच हाजिर करदे पातशाह कृपा करना। अमृत वेले की दात बख्शनी, नितनेम दियां दातां बख्शनियां, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शनी। सरदार अमृतपाल सिंह ओंकार सिंह जी 1100 रुपये लंगरा विच हाजिर करदे विद्यादान की बख्शीश करनी। गुरसिखी जीवन नाम बाणी की दात बख्शना, परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी।

करनी होवे 25 रुपये तनखा जमा करा के केशी इशनान स्वच्छ बस्तर चिट्टे कछहरे पा के सोहनिया दस्तारा सजा के पंजा ककारा दे नाल तैयार बर तैयार हो के पौने 11 बजे तखत साहब जी ते हाजिर हो जान। अज अमृत संचार होवेगा जी।

0: अमृत में गुरबाणी दी लड़ीवार कथा आरंभ हो रही है। लड़ीवार कथा श्रवण करो जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम।

गाज के जकारक जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुर बरे अकाल देख देख फते प्रपंच काल से दी दिना दिन चढ़दी कला अग्नि सचे पाशाह जी महाराज।

0: ऐसे चल प्रताप ते दिनम जो प्रताप तीन लोग जय जय कर रहे नाम सजा दोरा सदद्वार को छाड़ के गयो
1: द्वार द्वार पाए गए के राजा गोबरदास द्वार दोरा
0: राज गृह का खालसा आके रह न कोई ख्वार होए सब लेंगे जिस रन जो होए दोरा उठगी स्वाम लेश की कर पुला पासा ढंका बाजी ते काजे कलंक उतार चत्ता चक्रवर्ती चत्ता चक्र भूते स्वयं को स्वयं सरदास सुजते काल
1: मनासी आया स्वरूप सदा संग अपंग भूते
0: एक ते गुप्त संबेदन याप ते नानक गुरु सिंह काल जी सहाय दरबार मित्र दरबारा सत्यम सत्यंकारा।

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमात शीतल नसुर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्वी याद ब्रह्म से न वेद जारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विष्ण के वेद यो पुराण के तिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोर दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है। पीर यो पिकम्बर कित गन न परत इत भूमि हित होय के फिर भूमि ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस रो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिजद करे अनेक तोप जी कपट भेष पोषती अनेक दानी बावत है। शीश को कहा भयो मल जप काढ़ द अनेक दंड सोत न डंडो दयास टांग अथ तीस को कहा भयो रोग जप डर रहे उर्द मुख मन ते न मुंड ने हो रायो अद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धस मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग गोचरैया फल फूल को बचैया सदा बान को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो कसत शीस बृछन सो माटी को बचैया बोल पूज लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन गरियोई करत है। एक बाय ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठौर बास करे काक और चील देश देश विचरत है।

उठ आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उठ जाएंगे। के दिन अब बीज अच पच को करेंगे।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लेन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्मा ही फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे जो आचार भूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बज हारे।

काभ रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज

अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात, जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतबान, जय जात पात नहीं सत्र मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं सत्र साध, जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नाश, जय आद अंत नहीं रूप राज, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखय भंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कते, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन शीत घाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तद पावतन पार, कई ऊर्ध पाह देशन भ्रमंत, कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत सात्रत उचरंत वेद, कई गोग काव कथत कते, कई अग्नहोत्र कई पवन आहार, कई गर्त

कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम गई अग्निहोत्र कई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव दास पायत न पार कहू राज रीत कहू जोग धरम गई सिमृत सात उचरत सो करम लियाद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत साध सिमृत उचार गई वजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास गई ब्रह्मत देश देशन उदास गई जल निवास गई अग्न ताप गई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भोग डोसर

कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत ज्योत भुजंगी ये देव देव सराध पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग तात न मात न भ्रात सुतंग रोग न शोक न भोग भुअंग जय जम बह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थादिक बांध गणंग भवभूत भविख भवान दुअंग जय अंडज से तज जेर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल।

अंधूत अभूत अछूत पतंगन घात प्याद अनाथ गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ भुजंगर चेमण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान कंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लहै जय वेद पुराण कतेब जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नहीं नैक कृपा निध पान परै जय भोकड़ धरम सभै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तेउ याभव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है।

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पुत्र जानिए, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग ताग तक है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात्माद जात है, न बात जिहन वर्ण है, अदेक सेक भेक है, सदीव विश्ववरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववरण है, जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेख आन मानिए, जन जंत्र न जंत्र में न मंत्र में न तंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, गंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानिए, न देह है न गे है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है, न तात है न मात है, न अंग है न रंग है, न संग है न सात है, न दोख है न दाक है, न द्वैख है न देह है, न सिंह है न स्यार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संग।

है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है, न राग है न रंग है न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है अजर्म है अभेक है, न तात है न मात है अख्याल खंड रूप।

अकाल है, अबाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेग है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अविच है, सदा छिज तेज मानिए, न आद है, न व्याद है, अगाध रूप लेखिए, अदोघ है, अदाग है, अक्षय प्रताप देखिए, न कर्म है, न भरम है, न

है न आध है न गाध है न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा से दस पति तपस्पति वनस्पति जप।

आत्मानी है न जात पात मंत्र मित्र सत्र जने जानी है सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है।

सर्व जाता सर्व ज्ञाता सर्व भूको परान दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत मै जयगात भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आदनाथ श्री पद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत किन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मठ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानिये जय नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट कर्ता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ

बरबंके भुजाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अदसित झमके फुंक फनंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंडे अखंडन खून खिते दामनी दमंगन धुजा फरंकन फणी फुंकारन जोध जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय होशी मैखा सुर मर्दन भूमा का सर उर्धे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गति।

चुनिवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना है अगमता है एक वृते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आद कुमार आकाद वृते सुर नर मुन बंदन दोष निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रू कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय पताला का सनले संकटे निवारण दम धारण तेज प्रकार खंड धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी शस्त्र प्रकरखण आध नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम धारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आदतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुप्रसवासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुर

कोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुखूब राजे मध उरंग। दुर्जन दल दज्जे मंतन रिझे सबैन भज्जे रूह रणंग। जय जय होसी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग। चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते। जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़मते। जय जय होसी मैघा सुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते। खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते। बिड़लाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते। सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय होसी मैघा सुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अदुल बले। दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले। अष्टायद बाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ कते। जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध ब्रते। दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे। सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गाहे दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल प्रवाने शांत

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्धन बिडाल वदे सरदार विपरखण दुर्जन धरखण दुल्ल मरखण धरम दुजे धूमराज विदुन संश्रोण चुनसन सुम्भन पादन सुम्भ मथे जय जय हो सी मखासुर मर्दन आद नील काद कथे।

करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद वरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा।

दीनन की प्रतपाल कर संतु बार गनी मन गारे पछ पशु नक नाक नराध सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमापत भेद कते व भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोजी नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंग न भेव लगे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगात तवेक्षो भूत भवेख भवान अभय है अंत पिहे नाना तम आब दाग दुख छिद्र छह है लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह विहीन स्नेह सभोत्र देह विरक्त गेह अच्छ है जान को दे द जान को दे द जमीन को दे द जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरे सुंदर श्री पदमापत ल है रोगंते और सोगंते जल जो कंते वह भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ पेट ही गए पट बीच बचावे जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम सब ही कर द्यावे भूमा काज पताल रसादल जच भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारग से सब हूँ मिल गायो वेद गतेव न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनाद सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तेह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान भेद नृपान सब है बचहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद न दगाद बेगद वेग जप्यो तिन ही गुलतारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रत धारे देश फिरो कर वेश तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे बिना अंत को अंत के

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार पाव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे आरभ के आरभी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे दृढ़ वत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रूहले माग देश के मंगेले बीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्यावे ते बते थे आए दोख देह के दलत है। जिन्हें दोहे दयो तिन पूर्ण प्रताप वायु सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पैना दीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचाता है चीट की जंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कते ब्रह्मा मुख चार कते कृष्णा अवतार कते राम कहियत है। कहते ससुरास कहते सूरज प्रकाश कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते ब्यास प्रवीण कहते कुंभेर पुलीन कहते जाच कहियत है। कहते हैं विचार पैना पूरन को पावे पारताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार के बखानी है। अद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जाद जा की बाप हूँ न माय ताकि पूर्ण प्रभा की सोचा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ बता रहे के राजसी को सार है के बुद्ध शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना के खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के

तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावह तुद जी से जिन जुग मह सुख वासी। से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडियावर ना कोई। तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता।

तो सदा सर्व निरंकार का छीनत न भव। आप अपनी बुध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखान जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कई भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत तो पाता सकल मलेच करो रण घाता। जे इस ध्वज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो। रिध सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा काल फांस ते ताहे उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैल हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अल्दुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशद फल पावे सोई दुख ना तसै पिया पत कोई।

कह चौपई सम सत्र सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्न सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लग लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय छुन छुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दौ चलै राख आप मोह और ना दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास त्योहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान कर

जगि आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए, कब बाच दोहरा ठाड़ भयो मैं जोर कर, बचन कहा सुर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सुहाय दोहरा। जी जी तुमरे ध्यान को नितड़ ध्यान है संत, अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख

सब जग भयो जय जय जय सुरलोक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सवैया छतरी।

को तो है त्याग कहाँ चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम को जहो बिनती कर जोर करो जब आओ की औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर बासना नाहि प्रभु धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद बिचारे देह अनत नानत रह जस नाउ चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यो जियारे ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार भारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्ग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख

रंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल

मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो है।

साहेब अजीत सिंह जी, साहेब जुझार सिंह जी, साहेब जोरावर सिंह जी, साहेब फतेह सिंह जी, पांच प्यारे चाली मुक्ते सरबत शहीदो मरीदो।

लाल हटिया हो एक मन अलग फल ते वे पाइए जे बेकार कमाइए जे हो वह पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेवकवाइए।

कुदरत विसिया तेरा त्रिजाय लग्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कल भरपूर रिया तू सच्चा साहेब सुत सवाले उतन की सो पार पया कहो नानक करते किया बात जो किछ कर।

लख ठगिया पहना मिया रात नसी नाल तक कपहो गदिया बामण बटे आए कोहे बकरारे लखाया सब को आके पाए होए पुराना सुच।